0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই আকৰ্ষিতা সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: শোর।
1: পবন করে শোর,
0: আরে বাবা, শোর নেই, সোর সোর সোর।

पर है।

0: উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পৰ্যালোচনা পৰিষদৰ চতুৰ্দশ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী চি আৰ পাটিলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত শ্ৰীপাটিলে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত বিষয়টো আলোচনা কৰা হয় বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। এই বৈঠকত জলভাণ্ডাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বানৰ আগতীয়া সতৰ্কীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব বুলি শ্ৰীপাটিলে কয়। এতিয়াৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডত ছিক্কিম আৰু পশ্চিমবংগক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ চলাচল আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জল মেট্ৰ' সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় যে গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ 18খন চহৰৰ পৰা এই সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিকল্পনা লৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত গুৱাহাটীৰ লগতে শ্ৰীনগৰ, পাটনা, বাৰাণসী, অযোধ্যা আৰু প্ৰয়াগৰাজত এই সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়তো এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। নগৰভিত্তিক জল পৰিবহণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকাঠামো প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জল মেট্ৰ' নীতি 2026ৰ খচৰা আন্তঃ মন্ত্ৰালয় পৰামৰ্শৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি শ্ৰীসোণোৱালে উল্লেখ কৰে। কালিৰ বৈঠকত জলশক্তি দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজভূষণ চৌধুৰী উপস্থিত থাকে। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞয়ো বৈঠকত অংশ লয়। এই বৈঠকখনত ত্ৰয়োদশ বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ ৰূপায়ণৰ স্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ উপৰি নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনা পদক্ষেপৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱা হয়। ইয়াৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ সামগ্ৰিক কাম কাজৰ মূল্যায়ন কৰি বৰ্ডৰ ভৱিষ্যৎ কাম কাজৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক সাক্ষাৎ কৰে। সাক্ষাৎকালত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভাপতিগৰাকীৰ সৈতে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় আৰু সংকল্প পত্ৰ ৰূপায়ণৰ ৰূপৰেখা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দুষ্যন্ত কুমাৰ গৌতমৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয়। বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে এই সাক্ষাৎকালত মুখ্যমন্ত্ৰীক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক জয়ৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায়। কামৰূপ জিলাৰ হিংৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ এটা অভিলাষী আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। চৰকাৰে কৃষকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা 25টা পাইলট প্ৰকল্পৰ ভিতৰত অসমৰ একমাত্ৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো কালি বকু ছয়গাঁও বিধানসভা সমষ্টিত শুভাৰম্ভ কৰা হয়। খেতিয়কসকলে যাতে পথাৰত সুচাৰুৰূপে কৃষিকাৰ্য কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উন্নত প্ৰযুক্তিৰে পাইপ সংযোগ কৰি পানী যোগান ধৰাৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে বকু ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰাজু মেছে। 34.84 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পই 11,000 বিঘা ভূমিত পানী যোগান ধৰাত সহায় কৰিব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে।
1: এইটো এটা পাইলট প্ৰজেক্ট ভাৰত চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে। এইটো অসমত প্ৰথমটো স্কিম, গতিকে সেই প্ৰথমটো স্কিম আমি বকছাগাঁওবাসী পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই নিজেও বুজাৰ কাৰণে, জানাৰ কাৰণে আজি ইয়াত উপস্থিত আছিলোঁ। স্কিমখননো কেনেকুৱানো কি, গতিকে বেছিকেলি স্কিমখন পাইপলাইনেৰে আমাৰ মানে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়া খেতিয়কক। পূৰ্বতে আমাৰ কি আছিলে, হাতানপৰীয়া যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা আছিলে, পানী এক জেগাত আমি এটা ডেম এটা বনাওঁ, সৰুকৈ ডেম এটা বনাওঁ আৰু ডেমৰ পানীটো আমি কি কৰোঁ, কেনেলৰ জৰিয়তে লৈ যাওঁ। কেনেলটো আমি বনোৱাৰ কাৰণে বহুত আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়, জেগাৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে সেইকাৰণে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সাপেক্ষে তেওঁলোকে পাইপলাইনৰ জৰিয়তে পানীটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।
0: ৰাজ্য চৰকাৰে 1,459 কোটি টকা ব্যয়েৰে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে। জি আই এছ আধাৰিত পয় প্ৰণালী আৰু বান ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীক বান সহনশীল আৰু ভৱিষ্যমুখী মহানগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে নগৰীয়া বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰি জনসাধাৰণৰ জীৱন সুচল কৰি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। এই প্ৰকল্পৰ অধীনত স্বয়ংচালিত ভৰলুমুখ পাম্পিং ষ্টেচন, স্মাৰ্ট পকী পয় প্ৰণালী আৰু নদী পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ কাম কৰা হ'ব। তদুপৰি ভৰলু আৰু বাহিনী নৈৰ অৱবাহিকাৰ উন্নয়নৰ বাবে 500 কোটি আৰু 950 কোটি টকাৰো ব্যয়েৰে কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা অনাহক বিলম্ব নোহোৱা কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো দীঘলীয়া সময় ধৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ বাবে কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া অৱস্থা নোহোৱা কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
5: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
7: India is accelerating towards universal health coverage.
8: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
7: Pandemic preparedness and emergency responses.
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
9: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
10: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
8: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
11: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
12: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे।

0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. two leaders to discuss ways to boost

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাৰ পৰা হিন্দীত, 12:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया।

0: से पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions and strengthen strategic sovereignty. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart An Ju-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense, defense industry, and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability, and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said, "It was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation."

सनी भाई, सबसे पहले तो आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की कार्यक्रम सूची की। अभी कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम फिल्मी नगमे,

अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम तरंग। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवाएंगे मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अभिनीत चंद फिल्मों के गीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का वक्त होगा 1:40। दिन के 2 बजे में द न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीतलहरी 2:30 पर। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी जानकारी आज के कार्यक्रम सूची की।

सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाजों में मेट्रो इन द नो फिल्म से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं सनी निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में दीवान की फिल्म से ये गीत। बोल लिखे हैं शालिम बिनजोरी ने और संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के गाये कुदरत फिल्म से ये गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आरदी बर्मन।

सैनिक भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्मी नगमे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कल की कार्यक्रम सूची के बारे में। हर रोज की तरह कल के प्रसारण का प्रारंभ होगा 12:10 पर। कल है गुरुवार और पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम राग रंग। अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर।

समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम स्वरछाया 1:10 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का वक्त होगा 1:40। दिन के 2 मिडडे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले 2:30 पर। रोजाना की तरह कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शालीमार फिल्म से। नगमे के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है आरती।

अब आइए सुनते हैं अगला नगमा किशोर कुमार की आवाज में घर फिल्म से। नगमे के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत से सजाया है आरती बर्मन ने।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमे। अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में शर्मीली फिल्म से ये नगमा। नगमे के बोल लिखे हैं नीरज ने और संगीत एसडी बर्मन का। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में साथ साथ फिल्म से। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। सैनिक भाइयों, आज तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय सिनेमा के मेथड एक्टिंग के जनक के बारे में, जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें हम जानते हैं दिलीप कुमार के नाम से। सुनेंगे उन्हीं के अभिनीत चंद फिल्मों के गीत तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत।

दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में हुआ था, जिनका नाम रखा गया यूसुफ खान। फिल्मों में कदम रखने पर नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप कुमार रख दिया गया। ये नाम दिया बॉम्बे टॉकीज के अधिकारी देविका रानी ने।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

पुणे में कैंटीन का बिजनेस चलाते वक्त दिलीप कुमार की मुलाकात देविका रानी से हुआ, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी और साथ में दिया मौका भी फिल्म जोआड़ भाटा में अभिनय का। लेकिन इस फिल्म ने बॉलीवुड में कदम रखने का मौका तो दिया, परंतु शोहरत मिलना बाकी था।

सनी भय तरम कार्यक्रम में आज चर्चा जारी है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार के बारे में। सन 1947 में आई फिल्म जुगनू ने दिलीप कुमार का नाम चमका दिया बॉलीवुड में, फिर आई फिल्म मेला, अंदाज, यहूदी, देवदास आदि।

देवदास फिल्म ने दिलीप साहब को बना दिया फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेजेडी किंग। फिर आए बॉलीवुड की सबसे मशहूर बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम। लोगों ने उनके सलीम के किरदार को इस तरह अपनाया कि आज भी उस किरदार के लिए उनसे बेहतर किसी को भी नहीं अपनाते हैं दर्शक। इस फिल्म में मधुबाला के साथ ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री था उसे भी दर्शकों ने खूब सराहा।

मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार के चर्चे हर तरफ फैले थे, परंतु हालातों के चलते दोनों में दूरियां आई और दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ अपना घर बसाया। 40 के दशक से अभिनय शुरू करने वाले दिलीप कुमार ने 80 के दशकों तक अपना राज किया। उनके अभिनीत चंद फिल्मों के नाम है शक्ति, कर्मा, दुनिया, क्रांति, आदमी, राम और श्याम, कोहिनूर, मधुमति, फुटपाथ आदि। सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले भारतीय अभिनेता का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलीप कुमार के नाम पर ही है। 7 जुलाई 2021 के दिन दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

तो सैनिक भाइयों, इसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम तरंग। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज आपको सुनवाए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अभिनीत नया दौर, संघर्ष, आन, लीडर, मुगले आजम और राम और श्याम फिल्म से गीत।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवाएंगे चंद बांग्ला गीत। आइए सुनते हैं पहला रविन्द्र संगीत आशा भोसले की आवाज में। एल्बम का नाम है बोरो आशा कोरे एचएससी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम में अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में पहाड़ी झरना एल्बम से ये बंगला गीत। आइए सुनते हैं अगला बंगला गीत मन्ना दे की आवाज में, होय तो तुम्हार जोइने एल्बम से।

0: Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
4: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
6: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर आप सभी का आज के प्रसारण में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

सुनिभयो प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लरी। कार्यक्रम का पहला युगल गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में राम तेरी गंगा मेली फिल्म से। गीतकार है रविन्द्र जैन और संगीतकार भी रविन्द्र जैन ही है।

सैनिक भाइयों, प्रीतलहरी कार्यक्रम में अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में देवदास फिल्म से ये गीत। अब आइए सुनते हैं अगला गीत अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में तमाशा फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रीत लहरी। कार्यक्रम में अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में दिल का रिश्ता फिल्म से ये गीत, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, विवाह फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

सनीफाई म्यूजिक के साथ होता है अंत कार्यक्रम प्री लरी। अभी वक्त हो चुका है आज के प्रसारण के समापन का। कल फिर होगी मुलाकात कुछ सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए जय श्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जब सूरज तपता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में घटती ऊर्जा, गर्मियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं, थकान और पाचन संबंधी परेशानियां, लेकिन आयुर्वेद में हर मौसम के अनुसार स्वस्थ रहने के प्रभावी उपाय बताए गए हैं। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस, यानी गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह दबास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: थैंक यू मैडम।
1: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्मियों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं?
2: मैडम, ऐसा है कि गर्मी का जो मौसम है वो जो महीना चल रहा है अभी मिड मई से मिड जुलाई तक का है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं और जो शरीर पर पड़ती हैं तो पानी को सोख लेती हैं, तो शरीर में पानी जब कम होगा तो खुश्की आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और साथ में लू लगना, जैसे सनस्ट्रोक बोलते हैं, या उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां ऐसी आ जाती हैं। आदमी को खसरा वगैरह इस मौसम में ज़्यादा निकलता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कफ है शरीर का कम हो जाता है, जो शरीर की ताकत है वो घट जाती है, शरीर दौरबल्ला हो जाता है और जो वात है वो बढ़ता है, तो वात फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, तो परेशानियाँ ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए गर्मी में हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे बचने के लिए, तो उसकी प्रिकॉशन जैसे मैं आपको बतलाऊंगा कि भाई आप गर्मी में अगर बाहर जा रहे हैं तो घर पानी पी के जाएं पहले, तो उसके बाद सिर पे कोई कपड़ा रखें और छाते का प्रयोग करें। छाता लोग आमतौर पर जो छाते मिलते हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक जो है वो कलर जो है हीट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप वाइट कलर का छाता हो, जो वाइट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। इसलिए जो कपड़े हमारे पहनने वाले हैं वो भी लाइट कलर के हों या वाइट हों, वो डार्क कलर के ना हों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कम से कम गर्मियों में 2 बार स्नान भी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। और खाने में आजकल जो सीजन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, नींबू है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े, समोसे, इस तरह की जो चीज़ें बाज़ार का जो खाना उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार का खाने में आजकल आपको पता ही है जो तेल यूज़ हो रहा है वो बहुत घटिया किस्म का तेल यूज़ हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप को बचाएंगे तभी बच पाएंगे। इसमें हर इंसान की अपनी स्वयं की जिम्मेवारी है। अब गर्मी तो यूं भी बढ़ रही है और ये गर्मी जो है, जैसे आजकल देख रहे हैं आप, सब कारों में एसी है, बसों में एसी है, ट्रेन एसी चल रही हैं, तो हीट तो बाहर आ रही है ना, हीट आ रही है। तो आम आदमी जिसके पास कार नहीं है, यानी स्कूटर पर है या थ्री व्हीलर में है या पैदल है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसको जाना तो उसी रोड पे है, रास्ते से, और वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की, पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को, ये तो वो लोग बता सकते हैं, पर हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जो बेस है वो गाँव से है और हम ये समझते हैं कि कितनी दिक्कतें आती हैं, ये हम ही लोग जान सकते हैं, शहर के आदमी शायद इस बात को ना समझें।
1: गर्मियों में समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखें, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जैसे कि रेडियो डॉक्टर में सर हम आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियां बहुत हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार।
1: देखिए गर्मी में संतुलन बनाने के लिए देखिए बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री और जब बाहर हम जाते हैं आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर 46 डिग्री उससे भी ऊपर चला गया, सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर आप बाहर जाएंगे और बाहर कोई एक्सरसाइज करेंगे या दौड़ लगाएंगे या कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए इस ऐसी गर्मी में हल्का व्यायाम करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा। बाद में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और दूसरी कई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। इसलिए खाने पानी भी बार बार पीते रहिए आप, ये ज़रूरी है, बीच बीच में पानी पीजिए। नींबू का पानी डालकर नींबू पी सकते हैं आप दही की छाछ बना के शिकंजी बना कर पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप। ठंडी चीज़ें संतरा ले सकते हैं आप, संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। जो इस सीजन में जो चीज़ें पैदा होती हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उस वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ये खरबूजा है, तरबूज है, ये चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, ये सब गर्मी को कम करने के लिए है, तो आप इनका सेवन करिए आप। और कोई भी तली भुनी चीज़ें, पकौड़े, समोसे या पराठे वराठे मत खाइए आप, ठीक है। मसाले, गर्म मसाले वगैरह सेवन मत करिए आप, तो ये प्रिकॉशन रखिए आप।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: शांति।
0: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
0: जी, बताइए आपके क्या प्रश्न है।
2: हाँ, मेरा कहना है कि जैसे कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और जाहिर है कि आजकल ग्रीष्म ऋतु है, हमारे आयुर्वेद में भी एक कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या।
1: बिल्कुल।
2: तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
1: देखिए ऐसा है, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी मई, मिड मई से मिड जुलाई के बीच का है। इस टाइम जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और जल को सोखती हैं बॉडी के, उस बॉडी नहीं जमीन पे भी जल होगा उसको भी सोख लेती हैं, तो आपको देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। अब जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, खाना पीना ठंडा खाना चाहिए, कोई भी गर्म मसाले मिर्चें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप जो सीजन की चीज़ें हैं, जैसे आपका मैंने बताया था आपको अभी तरबूज पैदा हो रहा है वो खाइए आप, खरबूजा खाइए आप, नींबू का पानी पीजिए आप, दही की छाछ पीजिए आप, स्किंजी बना के पीजिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। खस का जो है उसका शरबत पी सकते हैं आप, है ना, संतरे का जूस पी सकते हैं आप, अनार का जूस पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप। तो इससे जो है आपको बॉडी आपकी ठीक रहेगी, संतुलन बना रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जरूरी है कि आप बाहर धूप में ना जाएं, अवॉइड करें, जाना बहुत जरूरी हो तो पानी पी के जाएं, साथ में सिर पे कोई कपड़ा कवर ढकें उसको, छाते का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो दिन का टाइम है करीब 11 से लेकर 4 बजे तक का, इसमें तो बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें, और ख़ासतौर से बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और बोलिए आप क्या चाहते हैं।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 केजी के आसपास मेरा वजन है, वो पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और व्हाइट मेरी स्किन है, जैसे अंग्रेजों की होती ना फॉरनर की
0: जी,
3: तो उस किस्म की मेरी स्किन है। तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून जी।
3: डॉक्टर साहब मेरे
0: हाइट कितनी है आपकी? डॉक्टर साहब
3: हाइट मेरी 6 फीट।
1: 6 फीट है, चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से वेट तो ठीक है आपका, कोई ज्यादा कम तो नहीं है।
3: डॉक्टर साहब मेरे 4 सवाल है, बड़े सीधे सादे भोले भाले।
1: हाँ बताइए।
3: पहला सवाल तो ये, डॉक्टर साहब चूंकि मेरी व्हाइट स्किन है तो लिहाजा मुझे गर्मी सूट वैसी नहीं करती।
1: हाँ बिल्कुल।
3: चूंकि मेरी पित्त प्रवृत्ति है
1: जी हाँ,
3: तो डॉक्टर साहब हो ये रहा है कि मेरे को लीवर के आसपास काफी ना इन दिनों गर्मी जलन गैस बहुत बन रही है लीवर के आसपास।
1: हाँ जी हाँ।
3: तो मेरी जो डाइट वो 4 फुलके होती थी, एक दो फुलके ही खा पा रहा हूँ। अब अगर मैं इनो पीऊँ पानी में मिला के या लिमका पीता हूँ तो मुझे रिलीफ मिल रहा, पर टेम्पोरेरी परमानेंट नहीं।
1: हाँ जी।
3: तो इसके लिए मैं क्या करूँ? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे श्वसन एलर्जी भी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? घरेलू स्तर पर अगर आपके पास आते तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा सवाल, तो मुझे निद्रा की भी प्रॉब्लम है, तो मैं गर्मी मुझे और भी सूट नहीं कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और चौथा आखिरी सवाल कि मुझे लीवर ये थायराइड या टॉन्सिल में से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे को बोलने में प्रॉब्लम, मतलब गले में ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस, और एक छोटा सा सवाल और था कि गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आंखों में गर्मी जलन होती है, सीधी सी धूप पड़ती है, आंखों पर गर्म हवाएं चलती हैं, तो आयुर्वेदा कंपनी ने आरोग्य नेत्रम अमर नेत्रम दवा निकाली है, तो अगर इसको आंखों में डालें तो इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? ये पांच सवाल है, प्लीज गाइड करें, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी।
1: ठीक है, देखिए ऐसा है, स्किन आपकी वाइट है, ठीक है, और आपको जो गर्मी है वो शूट नहीं करती। आपकी एज कितनी है?
0: 48
1: है। और काम क्या करते हैं आप?
0: काम नहीं बताया था, इन्होंने कहा था 48 वर्ष उम्र है।
1: काम
0: 70-75।
1: वर्क क्या करते हैं सर आप?
0: सर लाइन कट गई है। हाँ आप बता दीजिए वैसे ही।
1: अच्छा, तो ये जो है इसके लिए तो वही वही है कि गर्मी है ज़्यादा, मौसम सीजन भी गर्म का है, आपकी बॉडी में वैसे ही गर्मी है, तो नेचुरल खाने पीने का, अपना पत्थे का प्रयोग सही करें आप, और पत्थे का सेवन ना करें आप, दूसरा लाइफ स्टाइल अपना ठीक रखें, गर्मी में बाहर ना जाएं, अंदर रहें, ठंडे स्थान पर जाएं, अगर आपके पास अच्छी हो तो आप किसी भी ठंडे एरिया में शिफ्ट कर जाएं गर्मी के टाइम पे। तो सारी चीज़ें इस तरीके की हैं, लीवर है आपका, भूख जैसे कम लग रही है तो भूख के लिए आप थोड़ा सा नमक और जो है आपका थोड़ा सा काला नमक डाल लें, थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, थोड़ा अदरक डाल लें, उसको नींबू में भिगो कर रखें, उसको खाएं तो आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लीवर के लिए आपको जो है, लीवर के लिए कई दवाइयाँ भी आती हैं, वैसे तो चिरायता वगैरह अच्छा लीवर में काम करता है, आप ले सकते हो, उसको लें आप, ठीक है ना। और पानी बार बार पीते रहें आप, ये बहुत ज़रूरी है। नींबू आपको शूट करता है, नींबू की शिकंजी लें, छाछ दही की छाछ बन दही की जो है लस्सी बना कर लें आप, संतरा शूट करता है, संतरे का जूस पी लें, अनार का जूस पी सकते हैं आप, ये चीज़ें लीजिए आप सारी। थायराइड के लिए जो है शीतली प्राणायाम करेंगे आपको गले के रोगों में फायदा करेगा, शीतली प्राणायाम करें उससे भी आपको आपकी ठंडक रहेगी, गर्मी कम लगेगी आपको।
0: और उन्होंने कहा था कि उनको एलर्जी हो जाती है।
1: देखिए एलर्जी किस चीज़ से होती है ये तो आपको देखना पड़ेगा, अभी क्या खाने से एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करना पड़ेगा।
0: अच्छा, और एक उन्होंने कहा था कि उनको निंद्रा की भी प्रॉब्लम है, कि जैसे गर्मी बहुत है उनको नींद नहीं आ रही है कुछ।
1: आप अगर आप कैपेबल है तो एसी लगाइए अपना, और थोड़ा खाना खाने के बाद में आप आधा घंटा घूमिए, थकावट होगी तो नींद भी आ जाएगी।
0: और साथ में कह रहे थे कि उनको ड्राइनेस बहुत फील होती है, चाहे गले में भी आंखों में भी, गर्मी तो है
1: तो गर्मी में जो ड्राइनेस होती है आप उसके
0: लिए क्या करें?
1: गाय का जो है, गाय का प्योर घी जो बाजार में गाय का घी मिलता है वो प्योर नहीं है, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पर आप अपना गाय का प्योर दूध लो, घी निकालो, उसको एक चम्मच सुबह शाम ले लो आप, तो गर्मी कम कर देगा गाय का घी, वो सबसे अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, मेरा नाम योगेश है और मैं देहरादून से हूँ। गर्मियों में भूख को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है कि भूख कम लगती है, क्या करें?
1: देखिए वही है, क्योंकि गर्मी में लीवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लीवर गर्मी के अंदर, और लीवर का काम है सारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, तो वहाँ जो है आपका अपने एक बार तो टेस्ट वेस्ट कराओ भाई, आपका लीवर फैटी तो नहीं है, और खाना क्या खाते हैं आप इसके भी डिपेंड करता है, वेजिटेरियन है या नॉन वेज हैं, और क्या काम करते हैं, आपका काम का टाइमिंग क्या है, जो वर्क कैसा है आपका, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। फिर आपकी सोच कैसी है, तो एक तो अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी, दूसरा आपका पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए, पेट साफ होगा तो आपको भूख भी लगेगी, और उसके लिए आपको सुबह उठकर कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए खाली पेट, ठीक है, जब पानी पियेंगे तो आपका दीर्घ शंका होगी, पेट साफ हो जाएगा तो भूख भी लगेगी। आम मैं देखता हूँ कि आमतौर पर 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा होता है, परेशान रहता है, कम वाले को पता नहीं चलता कॉन्स्टिपेशन है, पर जिसका भी पेट छाती से ऊपर जा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडी चाहे जेंट्स, समझो उसको कॉन्स्टिपेशन है, केवल प्रेगनेंसी में पेट ऊपर जाना चाहिए लेडीज़ का, उसके बाद तो जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से वहाँ संपर्क कर सकते हो, और उसे आप एडवाइस लो, और उस तरीके से अपना खाना पीना ठीक करो, ये सबसे बेस्ट है। तो अपने आप को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो, फूड हैबिट्स चेंज करो अपनी, और पथ्य का आहार करो गर्मियों में विशेष तौर से, आप पथ्य को छोड़ दो।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि गर्मी में पाचन खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ उपाय है?
1: हाँ है, क्यों नहीं, आप जैसे आयुर्वेदिक में आप चिरायते का सेवन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लीवर के लिए काम करता है। बाकी दवाइयाँ तो बहुत कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही हैं लीवर के लिए, बहुत दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं, वो ले सकते हैं। बाकी भूख कम लग रही है तो सिंपल सा लौंग भास्कर चूर्ण है, आपके हजमा का भूख को लगाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका अदरक है घर में, आपके नींबू है और उसमें अजवाइन डालो, और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो अदरक के और डिबो दो उसको, उसको सेवन करो, एक दिन डुबा रहने दो, उसको सेवन करोगे तो आपकी भूख खुल जाएगी उससे।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, यह लिखते हैं डॉक्टर बलजीत दबास और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गर्मियों में आयुर्वेद में बच्चे, जवान और बुजुर्गों की डाइट कैसे अलग होगी, और ये फास्ट फूड का चलन हो गया है वो कितना हानिकारक है, और सुबह और शाम क्या करना चाहिए। थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिखते हैं।
1: चौहान जी, बात यह है कि जो फास्ट फूड है ना, ये तो समझ लीजिए बीमार करने का एक मीडिया आ गया है हमारे बीच में कि लोगों को बीमार करेगा और पैसा कमाएगा। अब इसमें एक भी चीज़ अच्छी नहीं है फास्ट फूड में, क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं, सबको बना बना खाना चाहिए, ना आदमी काम करना चाहता है ना महिलाएं काम करना चाहती, खाना कौन बनाए। तो सबसे आसान है कि फ़ोन करो, किसी टाइम भी खाना मंगा लो, रात के 12 बजे मंगाओ, 2 बजे मंगाओ। तो ये तो भाई हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल है, आयुर्वेद के हिसाब से तो 7 बजे के बाद खाना खाना नहीं चाहिए, और यहाँ खाने का टाइम ही उल्टा है, सोने का टाइम भी उल्टा है, सो रहे हैं लोग 2-2 बजे, उठ रहे हैं सुबह 10 बजे तक, तो कहाँ से ठीक रहेंगे लोग। तो ये तो एक सिस्टम है, भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि फूड हैबिट जो है रात में भोजन मिल रहा है बंद कर देना चाहिए। रात को 10 बजे के 11 बजे के बाद तो कोई होटल कुछ खुला नहीं रहना चाहिए, अभी रात पूरी रात खुले रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पहुँच से बाहर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये आप अपने आप में कर सकते हैं। अपना खुद खाना बनाओ और खाओ भाई, बाजार से क्यों मंगाते हो, आपको कोई फास्ट फूड वाले आपके घर थोड़ी आते हैं देने के लिए, आप ऑर्डर करते हो तभी तो आता है ना खाना, तो अब मत करिए ना ऑर्डर, आप घर में बना बना खाना खाइए। आपकी वाइफ होगी या बेटी बेटा जो भी है, आप खुद बनाओ, कुछ भी करो, मतलब तो मत खाइए बाहर का, ये जरूरी थोड़ी बाहर का खाना खाना, ये तो अपने ऊपर बात है ना।
0: मतलब ये खुद ही अपनी डाइट का ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पौष्टिक है क्या नहीं है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं हाय गुड हॉट नून, रिया फ्रॉम उत्तराखंड। ये लिखती है, माय फेवरेट ड्रिंक इन दिस बर्निंग समर इज चन्ना सत्तू एंड शुगर केन जूस एंड वुड एप्पल। वॉक करके आती हूँ इवनिंग में तो बहुत हीट हो जाती है, तो कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बॉडी कूल डाउन हो जाए।
1: देखिए वॉक कितनी फास्ट करते हैं आप भी डिपेंड करता है, स्लो करते हैं, मीडियम साइज मीडियम करते हैं या तेज करते हैं, और आपकी एज क्या है, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है ओवरऑल, तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अब आपकी आप ये तो आप हमें एज बताए, इतनी एज है आप, इतना वेट है, तो बताएंगे किस तरीके से करिए आप। तो आप मीडियम रास्ता अपनाइए, ना बहुत तेज चलिए ना बहुत स्लो चलिए, मीडियम चलिए। खाने पीने में गर्मी के मौसम में तो आजकल नींबू बड़ा सूटेबल है, आप नींबू की स्किंजी पी सकते हैं, आप दही की लस्सी बना सकते हैं वो पी सकते हैं, सत्तू ले जो बता रहे हो आप सत्तू लीजिए, बहुत अच्छा है, ठंडा है वो भी है ज़्यादा, तो ये मतलब जो भी ठंडी चीज़ें लीजिए, ठंडी जगह पर रहिए आप, ठीक है, तेज़ धूप में बाहर मत जाइए। तो सुबह शाम अपना बाहर का काम करिए, उस टाइम मत जाइए, अवॉइड करिए अपना, ये तो आपको देखना ना, ये हर आदमी की अपना इंडिविजुअल लाइफ। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि भाई ये पैरासीटामोल सबका बुखार उतर जाएगा, नहीं, वो कहता हर आदमी की अलग अलग नेचर।

0: ही आपका सकारात्मक सोच, दांत से ही पेट साफ, खून साफ, स्वस्थ रहेंगे आप। सीधा फार्मूला है, इसको इसको फॉलो करिए, आपकी बीमारी आपके पास आएगी नहीं कभी। तो खाने पीने का तो कंट्रोल करना पड़ा, जीभ पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा आदमी ठीक रह नहीं सकता।
1: डॉक्टर साहब, जैसे सर्दियों में होता है, हमें ठंड लग गई तो नज़ला, जुखाम, खांसी, ये सब हो जाता है, तो क्या लू लगने के भी कुछ लक्षण होते हैं कि हाँ लू लग गई या कुछ?
0: हीट शॉक होता है मैडम, शरीर में से आग सी निकलती है, जैसे आप जैसे भट्टी के पास बैठे, इससे पहला यही तो है कि गर्मी निकलेगी, शरीर में से आग सी निकलेगी, तो उसके लिए एकदम ठंड में जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो तो हम कपड़ा गीला करके बॉडी पर लगा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, या आजकल एसी में रखो उनको, तो इस तरीके कर सकते हैं। तो
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मैं नीता अमरावती से। सर, मेरे पति को लू बहुत लगती है, ऑफिस जाते टाइम एसी कार में जाते हैं, उनकी उम्र 55 है, आम का पन्ना और छाछ भी देती हूँ, ये सब करके भी लू क्यों लग जाती है? सिविल इंजीनियर है तो साइट पे जाना ही पड़ता है।
0: देखिए, ऐसा है कि सिविल इंजीनियर साइट पे जाते हैं, वो तो वहाँ धूप में खड़े होते हैं ना, ठीक है, वो तो क्योंकि काम है उनका, प्रोफेशन ऐसा, तो उनको बोलो भाई वाइट उनको दे ना, एक छतरी खरीद के लाओ, सफ़ेद कपड़े वाली ऊपर वाली, ठीक है, और उनको बोलो एक सफ़ेद कोई कपड़ा रखें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, ठीक ठीक हालत में उसको गीला करें बार बार, और सिर पर रख लें, तो सिर को कवर रखें, ऊपर छाता रखें, तो हीट नहीं लगेगी। दूसरा, कपड़े जो पहन रहे हैं वाइट कलर के कपड़े पहने, पूरी बाजू का कपड़ा पहने, यानी हाफ बाजू का पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी को कवर रखें, ठीक है। और खाने पीने का तो आप अच्छा खिला रही हैं उनको, अच्छी बात है, ये तो आप दे रहे हो, पर उनको बोलो ये सत्तू वगैरह बना के उनको वहाँ भी दे दें, ताकि वहाँ भी बीच में पिए वो, ठीक है ना, ये और ध्यान में रखें। और उनको बोलो पानी, जब बार बार पानी पीना है आपको, ये प्रिकॉशन रखते हैं, उसको दिक्कत नहीं आएगी फिर।
1: तो डॉक्टर साहब, कितना पानी पीना चाहिए और कितनी कितनी देर में लेना चाहिए?
0: देखिए, पानी का तो ये है कि कितनी उसकी हाइट है, कितना वेट है, आमतौर पर 3 लीटर पानी तो हमेशा पीना चाहिए
1: जनरल में, अगर सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए।
0: हाँ, और अगर उम्र कम है बच्चे को थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा मोटा आदमी है या ज़्यादा मेहनत करने वाला है जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो 3 लीटर तो है ही बच्चे, गर्मियों में 4 लीटर पानी भी आप इजीली पी सकते हैं। और आज के जैसे आपका जैसे लोग शराब वराब पीते हैं, मान लो कोई शराब पिएगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी शरीर की, जब गर्मी बढ़ेगी तो आपका लीवर भी खराब होगा, आपका ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है शराब ज़्यादा पीने से, आपका किडनी खराब हो जाएगी। तो एक ये है ना, खाना पीना क्या है, अब आपका जौ का सत्तू बनाइए, आजकल लोग बियर पीते हैं पर बियर में भी नशा डाल दिया इन्होंने, क्या कर दिया पता नहीं, तो बियर ठंडी रहती है, वो आप दे सकते हैं, वो पी सकते हैं।
1: जिसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल ID healthairdelhi@gmail.com पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, लेकिन त्वचा की हम देखभाल कैसे करें इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, शायद लाइन कनेक्ट नहीं हो रही। तो आप हमें बताइए कि गर्मियों में हम बाहर जाएं तो स्किन पर क्या लगा कर जाएं, क्या नहीं लगा कर जाएं त्वचा पे, जिससे कि हमारी कई बार स्किन बर्न हो जाती है या रेडिशनेस आ जाती है।
2: देखिए, मैं हम तो भी कोई भी क्रीम जो बाज़ार में अवेलेबल है वो स्किन पर लगानी नहीं चाहिए कोई भी। सबसे बेस्ट है आप कोकोनट खरीदो, अपने सामने तेल निकलवाओ, उसका इस्तेमाल करो आप, ठीक है, और उसको तेल की उसकी मालिश करो। मालिश करने के आधा घंटे बाद स्नान करो। उसके बाद में ये साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं इसको थोड़ा कम साबुन करो या अच्छी क्वालिटी का साबुन इस्तेमाल करो। आम जो साबुन बाज़ार में मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो स्किन को और ख़राब करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनो, आपकी बॉडी कवर होनी चाहिए ताकि सन जो रेज हैं वो सीधे आपकी बॉडी पर ना पड़े। सबसे ज़रूरी है, अगर आपकी रेज सीधी नहीं पड़ेंगी तो बर्न, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जितने भी क्रीमें बना रखी हैं वो तो बिजनेस का आइडिया है लोगों का, और लोग जाते हैं कोई कुछ इससे मिले करने के लिए, पर बाकी हमारे विचार से तो सब बेकार है। बाकी आप जैसे आपका आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप ले सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे,
2: एलोवेरा जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग सेविंग करने के लिए बाज़ार से क्रीम खरीदते हैं, एलोवेरा का जेल निकालो उससे सेविंग करो, बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास एकदम, पैसा ही नहीं लगेगा, घर के घर काम हो जाएगा।
1: जी, एलोवेरा का सेवन करेंगे और
2: उसी लगाएंगे बॉडी पे,
1: उसे बॉडी पे पूरी
2: बॉडी पे लगा सकते हैं,
1: पूरी बॉडी पे लगाएंगे और पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे जिससे,
2: और लाइट कलर के कपड़े,
1: लाइट कलर के,
2: वाइट बेस्ट है।
1: ओके, और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं सोराज बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ा से, हरियाणा से। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: जी बताइए क्या प्रश्न है।
3: मेरा प्रश्न ये है जी, मैं जो है जब सोच जाता हूँ ना लैट्रिन काली आते है जी, उसका भी कभी उसमें मवाद आता है जी, भूख कम लगती है जी।
2: खाना क्या खाते हो आप? अगर आप
3: खाना तो मैं घर का ही खाता हूँ।
2: घर का खाते, अगर पालक खाओगे तो लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है ना। तो लैट्रिन काली के बहुत सारे कारण हैं, अगर आयरन की कोई चीज़ें खाओगे तो, या कोई गोली खा रहे हो तो भी लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है। और पेट प्रॉपर साफ होता नहीं होता, ये अलग बात है। भूख आपको भूख अच्छी लग रही है, पेट साफ हो रहा है, सुबह कितना पानी पीते हो उठ के?
3: 2-3 गिलास पानी पीता हूँ डेली।
2: देखो कम डेली 2-3 गिलास तो बहुत ही कम पानी है महाराज। सुबह उठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीजिए बैठकर, पानी भी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटने खराब हो जाएंगे। अब पानी में आप अब गर्मी का मौसम है नींबू डालकर पियो, अगर नींबू शूट करता है, ठीक है ना, आधा आधा लीटर करके दिन में 2-3 बार पहले सुबह सुबह खाली पेट, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर पानी पियो, फिर बार बार बाथरूम जाएगा, खून भी साफ हो जाएगा, बीमारी आएगी नहीं ना कहीं भी। और बाज़ार का अगर कुछ खा रहे हो अडंग दड़ंग तो मत खाइए, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और बोलिए
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज भी हमारे पास ये लिखते हैं। नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सत्तू चने का जो का बेस्ट होता है, तो प्लीज़ गाइड करिए कि और क्या क्या हम ले सकते हैं। ये है सतीश कुमार, एज है 66 साल, रोहिणी सेक्टर 17, दिल्ली से।
2: देखिए, जो सत्तू आप ले रहे हो जो का चने

0: मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है सभी को लेना चाहिए। बाकी तो आप गर्मी के मौसम में जो गर्मी में फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां गर्मी में पैदा होती हैं, जैसे आप पर खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये आप खाइए। जूस पीना है तो आपका संतरे का जूस पीजिए आप, अनार का जूस पीजिए आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, नींबू आपका बहुत बेस्ट है, नींबू का पानी पीजिए, दही की शिकंजी बना के पीजिए आप, छाछ पीजिए, ये चीज़ें लीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा। और गर्म चीज़ें हैं, तली और चीज़ें अवॉइड करिए आप, और बाज़ार का खाना छोड़ दीजिए, बाज़ार में धूप में बाहर घूमना बंद कर दीजिए, ये रखिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: प्रश्न ये है जी, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ, जैसे कि तरबूज भी खाओ इस मौसम में, लेकिन हमने जो न्यूज में देखा तरबूज खाने से जैसे दो जगह मौत हुई है।
0: देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, आप अगर किसान हैं और खेती करते, तरबूज अपना खुद उगाइए आप और उसको खाइए, तो कहीं कोई इंजेक्शन का चक्कर नहीं। कोई आजकल तो बड़ी हेरा फेरी हो रही है, क्या कहें कौन इंजेक्शन लगा रहा है, वो आजकल बेल में इंजेक्शन लगा देते हैं
2: अगर। तो ये भी खाया जी, बेल में जो इंजेक्शन लगाते हुए को भी पकड़ा मैंने, नूज भी देखता हूँ मैं साथ में।
0: पकड़ा ना आपने, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसी चीजें मत खाइए आप, अगर ऐसे खाओगे तो भाई कुछ ये तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या है,
2: तो हमें ये कैसे पता चले ये इंजेक्शन का, ये
0: भैया ये बात, सवाल आपका बड़ा अच्छा है ये। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे रिलायंस कंपनी है सपोज, एक मिनट, वो खुद अपनी चीज़ें उगा रही है, ठीक है, खुद उगाते से मान लो फसलें उगा रही है, वो तरबूज उगा रही है, तो मैं समझता हूँ वहाँ हेरा फेरी नहीं होगी। जो जो रेडियो पे जो बिकता है, यहाँ बदमाशी होती है, ये लोग बदमाशी करते हैं, और ये अब क्यों करते हैं ये तो आप समझ सकते हो, जो भी जैसे चल रहा है मामला। तो ऐसा मत खाइए उनके, मत छोटी दुकान से, इनसे रेडियो से मत लीजिए, कोई जो एक अच्छा जो ठैया है ना, जहाँ पे लोग पता है कि रिलायंस वाला है मान लो, या कोई और अच्छी कंपनी का आपके एरिया में कोई होगा मुझे नहीं मालूम, तो जो खुद उगाता है उससे आप लोगे तो मैं समझता हूँ ऐसी नौबत नहीं आएगी।
1: मतलब
0: बाकी तो ये होता है, अगर मान ली कोई पौधा मेडिसिन अगर सांप के बिल के पास बनती पैदा होती है, सांप के बिल के पास पैदा होती है, तो उसमें भी कई बार सांप जैसे जहर उगलता है या पड़ता है, तो उसमें भी उसका असर आ जाता है उसके, ये तो बड़ा नाजुक मामला है इस चीज़ का। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ध्यान रखिए और कहाँ से ले रहे हो ये देखिए, आपको देखने का विषय है।
1: वही जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है कि आप खुद ही देख रेख के अपना सामान लें कि हम क्या खा रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि हमें देख रेख करनी चाहिए, तो लेकिन ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, बच्चों और बुजुर्गों को गर्मियों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए ये बात सही है कि बुजुर्ग और बच्चे, ये शरीर इनका जरा नाजुक होता है
1: जी,
0: और इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा कमी होती है इनमें, और ये गर्मी को ज़्यादा, ना गर्मी को ज़्यादा सहन सकते हैं और ना सर्दी को ज़्यादा सहन सकते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे बेस्ट है कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो धूप में ना जाएं बाहर, जाना पड़े तो सुबह शाम अपना काम करें, खेलना बच्चों को खेलना तो सुबह शाम खेलें, बुजुर्ग पार्क में जाते हैं तो सुबह जल्दी जाएं उठ के, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद में अपना उषापान करने के बाद में फ्रेश होकर आप पार्क में जाओ, आप 3 बजे 3:30 बजे उठो, उसके बाद में 7-8 बजे घर में आ जाओ। ऐसे बच्चों को थोड़ा, बच्चे तो नहीं उठा सकते 3 बजे, पर कम से कम उनको 5 बजे 6 बजे उठा लो, 6 बजे उठा कर आधा 1 घंटा घुमा कर बना ले आओ भैया, जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं। अगर आप धूप में बच्चों को भेजोगे या बुजुर्ग किसी सामान के लिए भेजेगा, जाएगा बाजार में धूप में, तो फिर तो नेचुरल बड़ा मुश्किल है उनका बचना धूप से। तो इसलिए बहुत मजबूरी है जाने की, तो फिर अपने छाते का इस्तेमाल करो, फुल बाजू के कपड़े पहनो और कपड़े वाइट पहनो या बिल्कुल लाइट कलर के पहनो, ये सब प्रिकॉशन रखो तो बचाव रहेगा।
1: तो ऐसे मौसम में बच्चों को जैसे स्कूल भी जाना होता है, खेलने भी जाना होता है, उनको गर्मी ना लगे तो उनको क्या दें?
0: देखिए सरकार ने इन मौसम में 2 महीने छुट्टियाँ कर दी गवर्नमेंट, इसलिए स्कूल बच्चों के बंद हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस बात में बड़ी जागरूक है, जो छुट्टियां दे रही है बच्चों को, पता है कि बच्चों को हीट गर्मी से नुकसान कर सकती है। बाकी बच्चे जो खेलते हैं वो ये तो सुबह सुबह के टाइम खेलें जल्दी, या फिर शाम को 6 बजे के बाद खेलें तो हम बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बच्चे तो क्या मेहनत का करेंगे, जैसे बुजुर्ग आदमी कई क्या होता है, वो काम करने की हैबिट होती है उनकी, वो ताकत से भी ज्यादा काम करते हैं, तो वो दिक्कत नुकसान कर जाता है उनको, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने मेहनत की होती है ना, तो उनके लिए लगता है हल्का है, पर होता है भारी, उनका शरीर इतना अलाउड नहीं करता।
1: तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए?
0: देखिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, सबसे बढ़िया है कि पूरी अच्छी डाइट लेनी चाहिए उनको, तो डाइट अच्छी लेंगे, डाइजेशन उनका ठीक होगा, उनका सोच अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, तो अच्छा। देखिए, सबसे ज़रूरी है आपका सोच पॉजिटिव रखना, फिर आपका आहार, पहले आहार आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आहार खाना चाहिए, उसके बाद निंद्रा, आपको पूरी निंद्रा लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की जो नींद का है सिस्टम, तो उसको पूरा लेना चाहिए। ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है और कम सोना भी नुकसानदायक है, तो ये चीज़ें देंगे। तीसरा है फिर आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का कि मतलब कोई सेक्सी नहीं है खाली, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपकी जो भाषा है, जो आप वर्ड बोल रहे हो, वो ऐसे ना हो जो दूसरे को चुभते हों, मतलब कंट्रोल के वर्ड होने चाहिए, ऐसी बात ना बोलो जो दूसरे को बुरी लगे, तो उसमें भी कंट्रोल रखो, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। तो लोग एक्चुअल में ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्स से जोड़ लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये कंट्रोल आपके हर चीज़ पर कंट्रोल है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल कर रखी है बहुत चीज़ों पर कंट्रोल आपका, तो ये कंट्रोल ही रखना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये तीनों चीज़ें, आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करोगे तो मैं समझता हूँ बीमारी आएगी नहीं। ये आयुर्वेद में इनको उपस्तंभ बोला है, जैसे स्तंभ होता है उसके जो नीचे लगाते हैं वो उपस्तंभ कहलाता है, यानी पूरा जो छत का वजन जो है उठ लेता है वो।
1: और सर, अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उनको कैसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका कैसी देखरेख करनी चाहिए?
0: देखिए, गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की बात जरूरत होती है। एक तो उनको डाइट, ज़्यादा डाइट की जरूरत होती है, बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी। दूसरा, वो महिलाएं काम भी ज़्यादा करती हैं, तो उनको भी चाहिए को सुबह सुबह जल्दी वक्त से काम कर लें, गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएं, और खाना पीना तला भुना, ये गर्म चीज़ें, गर्म मसाले वगैरह ना खाएं, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, मौसम के हिसाब से, जैसे आपका दही की छाछ है या सत्तू, जैसे आपने बताया था सत्तू है, और आपका नींबू का पानी है, चावल है और जौ है, इनका सेवन करें, ये ठंडी चीज़ें सारी ये खानी चाहिए सभी को। गर्मी में तो जौ का सेवन बेस्ट है, चावल भी बेस्ट है।
1: जी हाँ, इस पर हम बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जय जी डॉक्टर, में आज हम बात कर रहे हैं समर प्रॉब्लम्स एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, आज की बात पे पहुंचना चाहता हूँ कि मेरी एज 40 साल है, हेल्थ हाइट 5.7 है और वेट 80 प्लस है। जैसे ही सुबह हल्का गुनगुना पानी में अजवाइन और गुड़ डाल के पीता हूँ, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वजन कम करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँ?
1: देखिए, वजन कम करना चाहते हैं तो घिया और तोरी का सेवन करो, बाकी छोड़ दो, और खाना पीना कम करो, और गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, ठीक है? मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय पीते हो फीकी पियो या ग्रीन टी पियो, वजन घटेगा, ठीक है?
0: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माई नेम इज़ मुकेश, एज इज 79 ईयर्स, आई एम टेकिंग झंडू पंचारिष्ट, कैन आई यूज़ दिस इन दिस हॉट समर डेज?
1: देखिए, अगर आप झंटू पंचारिष्ट पी रहे हैं गर्मियों सर्दियों में भी, और अभी आपको शूट कर रहा है, तो आप पी सकते हो। अगर पीने से कोई दिक्कत ज़्यादा होती, मात्रा घटा सकते हो, 4 चम्मच पी रहे हो 3 चम्मच कर दो, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बंद कर दो, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है, हर एक का। यहाँ आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है कि भाई आप सबके लिए की फार्मूला लागू होता है, या मौसम के हिसाब से सब ऐसे कर सकते नहीं है। तो मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, खान पीने में भी चेंज होता है, और इंडिविजुअल के ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी को, बहुत से ऐसे लोग हैं दूध पसंद करते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है। वैसे आमतौर पर दूध सब पसंद करते हैं ना, पर दूध से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी हो रही है किसी को, तो अगर किसी को कोई चीज़ शूट नहीं करती तो सीधा फार्मूला उसको मत लीजिए आप, जो शूट करते हैं इससे लाभ होता लीजिए। और ये इस बारे में जो पेशेंट है वो ज़्यादा जान सकता है कि मुझे क्या शूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
0: डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि मौसम का असर हमारे स्वभाव पे भी पड़ता है। अच्छा मौसम होता है हम खुश होते हैं, अब जैसे गर्मी का मौसम होता है तो कई बार हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ है?
1: हाँ, देखिए, नेचुरल क्या है, जब हमारा शरीर खुश होता है, जैसे मन खुश होता है, तो तभी मन खुश होगा जब हम अच्छा फील कर रहे होंगे, गुड फीलिंग होगी। और जब हम गर्मी में परेशान होंगे या किसी वजह से परेशान होंगे तो फीलिंग कहाँ गुड़ रहती है, फिर तो फीलिंग गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए ना, स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो नेचुरल गुड फीलिंग होगी। और फिर हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं चीज़ों में गुड फीलिंग के लिए। ये नहीं खाली हम काम उधर तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उधर गुड फीलिंग कहाँ से आएगी भाई? गुड फीलिंग तब आएगी जब अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सब उसको सराहें कि अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई उसको कहेगा ये बेकार काम है तो कहाँ गुड फीलिंग आएगी? तो ये है कि सोच के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। और हमारा हेल्थ ठीक है तो हम अच्छी गुड फीलिंग कर सकते हैं, अच्छा सोचेंगे तो गुड फीलिंग रहेगी।
0: और डॉक्टर साहब, जैसे कि जो लोग कामकाजी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कई बार होता है कि कईयों को ऑफिस में काम होता है, वो पूरा पूरा दिन एसी में रहते हैं, जब ऑफिस वर्क ओवर हुआ या लंच टाइम हुआ वो एकदम सडनली एसी से बाहर निकलते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर फील्ड वर्क होता है तो वो एकदम से गाड़ी में बैठे या ऑफिस में गए तो एकदम सडनली एसी में गए, तो ये जो सडन मौसम का चेंज होता है या एनवायरमेंट चेंज होता है, तो जिसकी वजह से कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है?
1: उसके लिए एक भी, जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, अपन को बाहर जाना है तो 10-15 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए ताकि बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ऐसे ही गाड़ी में से आप उतरना है आपको तो पहले गाड़ी का एसी बंद कर दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ये तो है भी, ये तो नहीं कि बाहर तो एसी नहीं लग रहा है, जगह पे बाहर तो एसी है नहीं, हमारी पृथ्वी पर बेस हर जगह एसी चल रहा है, ये तो ठंडा मुल्क तो है नहीं है। तो ये है कि हमें ये अपने आप को सोचना है और अपने आप से करना है कि आप अगर जैसे गर्मी से आप एसी में जा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी धीरे धीरे कूल करेगी, पर जब आप कूल हो और एकदम बाहर जाओगे तो वहाँ हीटअप होती है बॉडी, तो वहाँ पहले ही एसी बंद हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल के करीब आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।

0: और साथ में अगर हम देखें जैसे गर्मियों में वर्कआउट करने के लिए भी कई बार मन करता है, कई बार नहीं करता है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ऐसे में योग और प्राणायाम गर्मियों में कितना लाभकारी है और कौन-कौन से करने चाहिए जिसे हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें।
1: देखिए, प्राणायाम तो मैं समझता हूँ कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है। आप कम टाइम करिए उतना, जैसे आपको मान लीजिए आपकी प्राणायाम करने की ताकत आधा घंटे की है तो आप 15 मिनट कर लो बस। मतलब इतना ज़्यादा ज़्यादा ना करो जिससे आपके बॉडी पर ओवरलोड पड़े। हल्का हल्का कहते हैं, हल्का खाओगे तो एक्टिव रहोगे, भारी खाओगे तो सुस्त पड़ जाओगे। तो वाली बात है, प्राणायाम करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, योग करना है, वो लिमिट में करो। ये नहीं कि भाई आप वेस्टर्न के मौसम में 1 घंटा कर रहे हो, गर्मी में 1 घंटा करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए टाइम रिड्यूस करो उसका, और इस तरीके से करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा बॉडी, अपनी इंडिविजुअल बॉडी एडजस्ट कर। टाइम क्या करने का ये भी डिपेंड करता है। अगर आप सुबह सुबह ठंडे मौसम में करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, गर्मी शाम को करेंगे तो शाम को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेचुरल वहाँ आप कम कर पाएंगे, तो वहाँ अगर ज़्यादा करेंगे दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए अपने आप को खुद एडजस्ट करना पड़ता है।
0: और अक्सर होता है कि हम एकदम ठंडा पानी भी पी लेते हैं, तो पानी किस टेम्परेचर का हमें पीना चाहिए? क्योंकि गर्मी लगती है, प्यास लग रही होती है, लगता है कि हाँ नॉर्मल पानी पियेंगे भी प्यास नहीं बुझेगी।
1: देखिए ऐसा होता है, यही तो बात है कि भाई आप मटके का पानी पियो, मटके में पानी रखो उसको पियो, कुछ भी नहीं होगा आपको, ना गला खराब होगा, ना खांसी होगी, ना कुछ होगी। अब हम एसी का भागते हैं, अब बाहर गर्मी में से आए और एसी का ठंडा पानी पियेंगे तो गर्म सर्द हो जाएगी, तो फिर आपको गला भी खराब, गला पकड़ा जाएगा और खांसी जुकाम भी हो सकता है आपको। इसलिए बेहतर है अगर मान लें मटका नहीं है, गर्म एसी है, तो पानी ठंडा गर्म में मिक्स कर लो फिर पी लो उसको, पर एकदम ठंडा मत पियो आप, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी एकदम ठंडा है तो आपको दिक्कत पड़ेगी।
0: सर, और एक ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी।
0: वो लिखते हैं कि बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरा प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में मुंह पर घुमौरियाँ हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए कि हमें मुंह पर घुमौरियाँ ना हो, इसके बारे में बताने का कष्ट करें।
1: देखिए ऐसा होता है, एक आपकी एज कितनी है हम ये जानना चाह रहे हैं।
0: उन्होंने लिखी है उनकी एज जो है 25 वर्ष,
1: बस यंग एज है आपकी
0: जी।
1: तो ये
0: है जोगाराम बलोतरा राजस्थान से।
1: जोगाराम जी, गर्मियों में लोग आम खाते हैं और आम जो है वो कार्बाइड में पक रहा है, पता है आपको, कार्बाइड में पकता है और कार्बाइड से कैंसर होता है, ठीक है, और आम की तासीर वैसे गर्म है। तो ये जो गर्म आम है और गर्म कार्बाइड का तो छोड़ दीजिए आप, वो तो पूरे देश में ऐसे चल रहा है इसलिए कैंसर भी फैल रहा है उससे, पर जो गर्मी है और आम खाने से ऐसी घुमरियाँ हो जाती हैं आमतौर पर यंग एज में, ये कॉमन है। इसका तरीका ये है कि आम को पहले आप पानी में भिगो, कम से कम 24 घंटे पानी में भिगा रहने दो, पानी चेंज करो उसका, और उसके बाद में उसको खा रहे हो तो दूध के साथ लो उसको, दूध आम और दूध मिक्स करके लो, या आम खाओ ऊपर से दूध पियो, तो फिर ये घुमरियाँ आपको नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ फ्री में। अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं 6 घंटे की नींद लेके, तो 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे अपना स्पूटम अपने चेहरे पर लगाओ, ऐसा करोगे तो 15 दिन में घुमरियाँ आपकी सूखनी शुरू हो जाएंगी, तो ठीक हो जाएंगी बिना दवाई के।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
2: सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा कठौर, जिला मेरठ से।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लाए हैं, डॉक्टर साहब को भी हमारा सलाम।
1: सलाम जी।
2: हाँ जी, हमारे जो बच्चा है करीब 6 साल का है, वो गर्मियों के दिनों में उसकी आंखों में बहुत खुजली हो जाती है, तो इसके लिए आपसे बस ये मालूम करना था।
1: देखिए, ठंडे पानी के छींटे मारी आंखों पे उनको, आंखें बंद करा के ऊपर से मारी ठंडे पानी छींटे, दिन में 3-4 बार आंखें धोइए और उसको कम से कम 2 बार उसको नहलाइए, और धूप में उसको जाने से बचाइए आप, और धूप का चश्मा अगर आप बच्चा लगा सकता है तो उसका इस्तेमाल करें बस।
2: और जैसे आंखों में कोई आयुर्वेदिक की कोई ऐसी दवा है डालने की?
1: डालने के लिए आयुर्वेदिक दवाई आती है, एक आइसोटोन आती है, वो डाल सकते हैं।
2: अच्छा, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप ये रेडियो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी,
1: धन्यवाद।
2: जितने भी आप हमारे साथी सुन रहे हैं भाई, सभी को हम कहना चाहेंगे प्रोग्राम सुना करें और उस पर अमल करें। और हम भी सुबह उठ के पानी पीते हैं करीब 1-1.5 लीटर, और उसके बाद में सोच जाते हैं, साफ हो जाता है पेट, इसलिए बहुत अच्छा दिन भी
0: जी,
2: अच्छा गुजरता है
0: जी। धन्यवाद जी।
2: अच्छा
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने आंखों का पूछा, तो एक बार संक्षिप्त में, मैं चलने का समय हो गया है।

0: लेकिन एक बार जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की डाइट सभी को लेनी चाहिए।
1: देखिए आयुर्वेद में तो जैसे वेदों में अपना है, जैसे अपना सनातन है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और आयुर्वेद में जो है वो स्वस्थ रहकर जीने का तरीका है। तो अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई आदमी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यहीं से शुरुआत होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर उष्णपान करना, उसके बाद में फ्रेश होना, मंजन करना, ब्रश करना। अब ब्रश मंजन की बात है, मंजन की बजाय सबसे जो है बबूल और नीम की दातुन सबसे अच्छा है, पर लोग उनको भूल गए। आजकल पेस्ट लगा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उनसे कैंसर भी हो रहा है मुंह का। तो या फिर आयुर्वेदिक मंजन करिए। अब ये है, यहाँ पे जो मिलावट का चक्कर है सबसे बड़ा खतरनाक है। अब लोग मिलावट से बचते, कोई मिलावट के लिए तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। कोई किसी चीज़ में कुछ भी मिला सकता है, आपको कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही आपको, तो आप करेंगे क्या? तो ये कि आयुर्वेद में जो सिस्टम लिखा है उस तरीके से आप नहाना धा खाना पीना सब एक लिमिट में रखिए आप, तो उस चीज़ को अपनाएंगे आप तो मैं समझता हूँ बीमार होगे नहीं आप। ठीक है, उसमें वही है।

0: है आपको तो साफ रहेगा। अब लोगों को कब्ज है किसी को, अब खाना उठपटांग कितने मसाले उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो किडनी खराब कर रहे हैं, कहीं लीवर खराब कर रहे हैं, कहीं कितनी प्रॉब्लम, और गैस बनती है लोगों को, गैस बनकर गैस जहाँ भी जाती है वहीं अपनी बीमारी पैदा करती है, गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो सब गैस की मेहरबानी से हो रहे हैं। जहाँ गैस जाएगी अपना काम, गैस मतलब वायु, और ये गर्मियों में वायु बढ़ती है, वायु का वेग बढ़ता है, इसमें कफ का कम होता है, इन ताकत कम हो जाती है और शरीर इस तरीके से वायु का वेग बढ़ता है। तो खाने पीने का सिस्टम ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब जी एवं शिल्पा जी और शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और विषय भी बहुत अच्छा है। आज आयुर्वेद पर जानकारी प्राप्त हुई। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाते जाते संक्षिप्त में बस इतना श्रोताओं के लिए एक मैसेज बता दीजिए कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए रोज़ क्या करें।
0: देखिए, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडी चीज़ों का खाना, धूप से बचना, गर्म मसाले वगैरह नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड खाएं आप, वो ठंडा हो सकता है, नॉन वेज हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। तो जितने आपके ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो के खाएं आप, सूखे ना खाएं, और सूखे गर्म होते हैं, भीगने के बाद में गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो आप खाएं उनको। पानी ज़्यादा पिएं, बार बार पानी पीते रहें, हर घंटे में 2 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना पानी पिएंगे, क्योंकि पानी हमारा बाथरूम से भी जा रहा है बाहर, खून साफ हो रहा है, पसीने से भी जा रहा है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, स्वस्थ वही जो मौसम के साथ संतुलन बनाकर चले और प्रकृति के नियमों को अपनाए। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन जीने की कला है। स्वस्थ जीवन की शुरुआत सही आदतों से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर बलजीत सिंह दबास, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैडम, आप मुझे बुला रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपना ज्ञान लोगों को दूं और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो आप अपना काम भी सही करेंगे और अपना परिवार का काम भी, परिवार को भी सब संभालेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो देश की सेवा भी सही करेंगे।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, गर्मी की तपिश से बचाव का मंत्र है सही दिनचर्या और संतुलित आहार। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सजग रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का जो
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: सर्जियो मटेरेला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीति भागीदारी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को मिलिट्री ऑनर दिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा से उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन के लिए बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, झारखंड, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आंधी आने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।

दोस्तों, जब जब ये गीत हमारे कानों में पड़ता है तो हमको याद आ जाती है 1982 की फिल्म नदिया के पार। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पारिवारिक संबंधों को और नैतिक मूल्यों की अहमियत को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया था।

लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, वैसे वैसे आज की युवा पीढ़ी ना तो रिश्तों की अहमियत को समझ पा रही है और ना ही संभाल पा रही है नैतिक मूल्यों की धरोहर। और दोस्तों, इसी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं और कदम बढ़ रहे हैं गुनाहों की तरफ। दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी विषय पर, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रायोजित कार्यक्रम दिशा में।

जी हाँ, कुछ ऐसी ही सोच भटका रही है आज के युवाओं को, और उनके कदम बिना सोचे समझे बढ़ जाते हैं गलत दिशा में, और जब तक वो समझ पाते तब तक हो जाती है बहुत देर।

मेरा नाम आशीष है और मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मेरी शादी हुई कंचन नाम की खूबसूरत लड़की से और एक साल बाद हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। हम सब बहुत खुश थे। फिर पता नहीं किसकी नज़र लगी और मेरी मुलाकात हो गई समीर नाम के लड़के से, जो देखने में एक अच्छे घर का लगता था। उसने मुझे बताया कि उसका अपना बिजनेस है, जिसके कारण कई बार वो शहर के बाहर आता जाता रहता है। उसके रहन सहन और बातचीत से मैं इम्प्रेस हो गया और उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। और एक दिन वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे दिल्ली के बाहर जाना है और मेरे पास कुछ 3-4 लाख रुपए हैं, क्या तुम उनको अपने पास 1-2 दिन के लिए रख सकते हो? मैंने हामी भर दी और वो पैसे मुझे देकर चला गया। 2 दिन के बाद पुलिस मेरे घर आई, तब मुझे पता चला कि समीर नशे का बिजनेस करके युवाओं के जीवन से खेलता है और मेरी गलती की वजह से मुझे 3 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। लेकिन अभी मैं बाहर हूँ और अपने जीवन की शुरुआत फिर से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे जो गलती हुई कि मैंने किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंखें बंद करके उस पर यकीन किया। मैं इस कार्यक्रम के द्वारा सभी लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी पर जल्दी से भरोसा ना करें, नहीं तो आप भी मेरी तरह मुश्किल में पड़ सकते हैं।

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा एसआर यानी संतोष राव के साथ। और दोस्तों, आज के विषय पर क्या विचार हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ के, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार प्रिय श्रोता, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में शामिल रह सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके जीवन में इस तरीके से शामिल होना कि उनको सही दिशा दिखा सकें ताकि बच्चों का विकास अच्छा हो। इसलिए माता पिता का ये जानना कि उनके मित्र कौन हैं, बच्चों का शेड्यूल क्या है, किस तरीके की उनकी हॉबीज हैं वगैरह वगैरह, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए माता पिता को अपना समय निकालना होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अधिकतर आजकल माताएं भी घर से बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए, तो जब माता पिता दोनों बाहर हैं तो और भी ज़्यादा हमको ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों का आना जाना कहाँ है। ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे माता पिता का कहना कम मानते हैं, लेकिन जो माता पिता कर रहे हैं उसको देखते बड़े गौर से हैं। जी हाँ, हो सकता है कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो स्वयं हम उस पर नहीं चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करना, अगर माता पिता ये रूल बनाते हैं कि घर में खाने के समय पर

0: पर या जब परिवार एकत्रित है तब हम अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता खुद फोन पर लगे हैं तो फिर ये सोचना कि बच्चे उनकी बात मानेंगे ये बहुत मुश्किल है। तो पहले तो हमको खुद ही अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमको लिख कर कह रहे हैं, हमको फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए वो हमारी सलाह चाहते हैं, हमारे सलाहकारों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने स्कूल जाते आते बच्चों को वो मोबाइल के जो एडिक्शन हो गया है उससे बचा सकते हैं। परिवार के लिए जो नियम बनते हैं उनको सबसे पहले माता पिता को खुद फॉलो करना है, उसके बाद ही बच्चों को हम अपना आदेश दे सकते हैं। बच्चों के साथ दोस्ती रखना ज़रूरी है कि दोस्ती में वो क्या क्या हमसे शेयर कर लेते हैं, क्या क्या हमसे बातें कर लेते हैं। अधिकतर देखा गया है, पाया गया है कि माँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के काफ़ी करीब होती है और बच्चे काफ़ी कुछ उससे शेयर कर लेते हैं अपने मन की बात। कई परिवारों में पिता बहुत अच्छे होते हैं और अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं। जैसे मेरी परवरिश में मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता दोनों सर्विस करते थे, दोनों कार्य करते थे, जॉब करते थे, लेकिन मेरे पिता हमारे साथ काफ़ी समय बिताते थे, हमको शिक्षा देते थे। जिस भी हम अपने जीवन के सीज़न में होते थे उसके संबंधित हमें बताते थे, जब छोटे थे तो किस तरीके के दोस्त रखने हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, उनको घर बुलाते थे अपने जन्मदिन पर और बाकी जो त्यौहार होते थे, कहते थे अपने मित्रों को घर बुलाओ, अपने स्कूल के साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको घर बुलाओ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने मित्रों से, तो हमारे मित्र कौन हैं ये माता पिता जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे मित्र हैं तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव भी अच्छा होता है। आजकल के समय में माता पिता बच्चों को लेके बहुत परेशान हैं। हमारे श्रोताजन ने बताया उनके बच्चे ड्रग्स में हैं या घर छोड़ के चले गए हैं या डिप्रेशन में हैं, तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और केवल नज़र रखना ही नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक दोस्ती के साथ उनको सही दिशा दिखाना आवश्यक है।
1: जी हाँ, आज का युवा जब सब कुछ पता है कहने लगे तो हर माता पिता को हो जाना चाहिए सतर्क, क्योंकि इस उम्र में युवाओं को हर चमकती चीज लगती है सोना। जी हाँ, मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी का साथ अगर बच्चों को मिलता रहे तो बच्चों के कदम बहकने से पहले वो 100 बार जरूर सोचेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से आज के विषय पर बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर फोन या मैसेज जरूर करें। 7678438471। जी हाँ, 7678438471 हमारा ये नंबर है जिस पर आप हमारे काउंसलर से समाधान पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन के साथ जुड़कर लोगों की जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर 7678438471 पर मैसेज जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति एक बार फिर से आप सभी के साथ. जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हर बार हम आपको ले चलते हैं एक नए कॉलेज की तरफ, हर बार आपको आपकी मुलाकात करवाते हैं नए स्टूडेंट से, नई सोसाइटी से, टैलेंट से, टीचर से, प्रिंसिपल से. एक बार फिर से इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग. जी हाँ, आज हम श्यामलाल कॉलेज इवनिंग जो है वहां के स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और ये काम कर रही हैं हमारी सहयोगी माला नेगी जो पहुंची वहां पर, यानी कि कॉलेज में. और वेल, कॉलेज लाइफ के सारे नजारे जो है उन्होंने देखे हैं, बहुत सारी एक्सटेंसिव कवरेज उन्होंने की है और ये सारी कवरेज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए. आइए करते हैं शुरुआत की आखिर माला नेगी ने वहां पर क्या क्या की बात.
2: आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में पहुंची है रेनबो इंडिया की टीम. ये खास मौका हमारे लिए भी है क्योंकि आकाशवाणी के 90 इयर्स के सेलिब्रेशन को लेकर हम भी काफी एक्साइटेड हैं और इस बारे में श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की स्टूडेंट्स भी कुछ कहना चाहती हैं.
3: मेरा नाम सान्या खरे है, मैं बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ. मेरे लिए आकाशवाणी वो आवाज है जो एक दिल से निकल के दूसरे दिल तक जाती है और सिर्फ सुनाई नहीं महसूस होती है.
2: और आर्या, आप क्या कहना चाहेंगे?
4: मेरे लिए आकाशवाणी हर पीढ़ी को जोड़ने वाला एक खूबसूरत माध्यम है.
2: अश्नित, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप आकाशवाणी के बारे में?
5: आकाशवाणी जहां हर एहसास को मिलती है उसकी अपनी आवाज.
2: श्यामलाल कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं मीनाक्षी. आइए जानते हैं उनसे कि उनके लिए आकाशवाणी क्या है.
6: आकाशवाणी मेरे लिए मेरे अकेलेपन का साथी है.

0: Zena, loads of love and many kisses to you. So beautiful, so lovely, so melodious. मतलब ऐसे लगा कि तुम जो गा रही थी ना, जो सोच के गा रही थी, मैं वहाँ पहुँच गई. बहुत ही ब्यूटीफुल. आर यू अ ट्रेन सिंगर?
1: मैं अभी सीख रही हूँ, मैं ट्रेन तो नहीं हूँ.
0: इट वॉज वेरी लवली. ज़ेना के साथ गिटार पर थे
1: आदित्य कश्यप.
2: वाकई में बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति इन स्टूडेंट्स की, और आकाशवाणी और स्टूडेंट्स का ये जो संगम है, इसी का नाम है अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग. सुनते हैं इसे आप हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे. लेकिन ये तो थी सिर्फ बातचीत की शुरुआत. आगे बढ़ाते हैं अब हम इस बात को. और माला नेगी ने की वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात, बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी बातें उन्होंने कवर की. आइए जानते हैं.
0: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के एनसीसी ग्रुप के साथ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रॉफी. और ये इतनी ट्रॉफीज इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्यामलाल कॉलेज का एनसीसी नंबर 1 पर आता है. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू.
3: थैंक यू.
0: और जानना चाहेंगे कि जब नंबर 1 होता है कोई भी इंसान, कोई भी टीम, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि वो नंबर 1 कैसे हैं. यही हम भी जानना चाहते हैं.
3: सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. देयर आर लॉट मोर थिंग्स इन व्हिच वी हैव वॉन द ट्रॉफीज, एज लाइक ड्रिल्स, टग ऑफ वॉर. द फॉरमोस्ट थिंग इज द हार्ड वर्क. द हार्ड वर्क वी हैव पुट इन. हमने हर एक चीज को बहुत सिस्टमैटिक मैनर में रखकर पूरे की पूरी शिद्दत से काम करा, ऑनेस्टी के साथ. इसी ऑनेस्टी के साथ हमने हर एक चीज क्लियर करी और उसी वजह से आज हम नंबर 1 पर.
0: क्या बात है. थैंक यू सो मच. And all the very best to you for your all future initiatives. मैं तो कहूंगी कि आप अगले आने वाले हर सालों में बस इसी तरह से नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखें. थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू मैम.
0: हाय, तो भी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ एक नहीं बल्कि दो दो लखपति लड़के हैं. अब सवाल ये उठता है कि ये लखपति कैसे हैं, और मैं इनके बारे में इस तरह से इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल डे है और आज ही के दिन कॉलेज के ये दो स्टूडेंट्स जो हैं वो लखपति बने हैं, क्योंकि श्यामलाल कॉलेज का स्पोर्ट्स में बहुत योगदान है, बहुत नाम है, और आज ये कंपटीशन विन करके आए हैं जिसका प्राइस था 1,00,000 रुपए. तो ज्यादा जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं. सबसे पहले आपका नाम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू.
4: थैंक यू मैम. मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं बीकॉम सेमेस्टर 2 का बच्चा हूँ. मेरे अंकित सर कोच है, सर ने बहुत सपोर्ट किया, प्रैक्टिस वगैरह रेगुलर करवाई, किकिंग वगैरह सब चीज, अटैक, नया नया आइडिया बताया, इससे हमें नया नया जानने को मिला, टेक्निक मिला, वही आज हमने यूज किया, क्लियर स्कोर आया. फर्स्ट मैच हमारा रमजवान कॉलेज से था जिसको हमने 7 पॉइंट के लीड से हराया. सेकंड फाइट मेरा हंसराज से था. सेकंड फाइट में मैं थर्ड राउंड तक गया क्योंकि सेकंड राउंड टाई हो गया था. फिर थर्ड राउंड में जाकर 2 पॉइंट के लीड से जीता. फिर थर्ड फाइट पीजीडीएवी इवनिंग से हार गया मैं, जिससे मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ.
0: और ये आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला, साथ में आपको 1,00,000 रुपए का प्राइज भी
4: प्राइज मनी मिला.
0: और ये प्राइज मनी आपको कौन देगा?
4: दूसरों देगी.
0: ओके, ऑलराइट. वी हैव अनदर लखपति बॉय. आपका नाम?
5: शिवम कुमार सिंह.
0: शिवम, आपको भी 1,00,000 रुपए मिले हैं, तो कौन सा कंपटीशन आपने जीता है?
5: मैम टाइक्वांडो.
0: टाइक्वांडो में
5: अंडर 58.
0: तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए, कहीं ऐसा लगा कि उसमें पढ़ाई भी थोड़ा सा हिल गई है?
5: यस मैम, पढ़ाई भी हिल गई है, अटेंडेंस भी मैटर करता है. हाँ. के लिए क्लासेस भी लेना जरूरी है, ट्रेनिंग करना जरूरी है, मेडल ऐसे नहीं आएगा बिना ट्रेनिंग के.
0: तो इसमें कॉलेज कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी क्लासेस मिस हुई, अटेंडेंस की गड़बड़ हुई है, तो कॉलेज कितना सपोर्ट करता है?
5: सर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं. खेलो ड्यू का फॉर्म भी सर ने भरवाया था. और हमारा इंटर कॉलेज भी करवाया.
4: सर पता भी नहीं था, सर ने नोटिस करवाया.
5: खेलो ड्यू के बारे में पता भी नहीं था, सर ने फॉर्म भरवाया, सर ने करवाया हमारा.
0: तो कहने का मतलब ये है कि श्यामलाल कॉलेज जो है वो अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के लिए हर तरीके से सपोर्ट करता है. और इवनिंग कॉलेज जब इस तरह से परफॉर्म कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या उन तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाने के लिए स्टाफ का और स्पोर्ट्स के जो टीचर्स हैं उनका बहुत अहम योगदान है. थैंक यू सो मच इस इंटरेक्शन के लिए, और बहुत बहुत आपको फ्यूचर के लिए विशेस, गुड विशेस. अभी 1,00,000 जीते हैं, 10,00,000 और 1,00,000 रुपए जीती, और भारत का नाम रोशन कीजिए. थैंक यू सो मच. तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ है अंबेडकर स्टडी सर्कल सोसाइटी के मेंबर्स. तो आइए इनसे जानते हैं कि इस सोसाइटी में एक्चुअली होता क्या है. हाय, वेलकम टू द शो.
6: नमस्ते मैम. बेसिकली अगर बात करें तो ये सोसाइटी बाबा साहब को लेकर ही बनाई गई है
0: जी,
6: और इसमें तो सारे फंक्शन बड़े होते हैं, लेकिन अम्बेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को आती है हम, कि बाबा साहब को हम लोग केवल आइकॉन के रूप में प्रदर्शन करते हैं कि बाबा साहब को कोई जानते हैं, बट हम बाबा साहब के जीवनियों सीखना है, हमको उनके, हमें उनके स्ट्रगल सीखना है। तो हम लोगों ने उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जो एक बच्चों के ऊपर, जो बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर छप जाए। अच्छा। तो हम इन सारे कार्यक्रम को करते हैं इसमें।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में, और अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ के इस कॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं। जनरली क्या होता है, जब कॉलेज में बच्चे आते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो फ्री हो गई, अब मजे ही मजे हैं। लेकिन कॉलेज में भी कई तरह की परेशानियां होती हैं, और उन परेशानियों को हैंडल करती है ये टीम, यानी कि ICC की टीम, जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की। किस तरह के कंप्लेंट्स लेते हैं ये और उसका सलूशन कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम?
4: मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं इस कॉलेज का जेंडर चैंपियन हूँ, यानी मैं इस कॉलेज के कमेटी मेंबर हूँ, जिसमें हम बच्चों से हरासमेंट अगर फील कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकली हो, या फिर किसी भी टाइप का हरासमेंट हो, जो उसे लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो हमारे पास बिना झिझक आ सकता है, मतलब बिना किसी झिझक के आ सकता है। वो हमें आके बता सकता है कि हमें उसके लिए एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते हैं। वो बताएगा हमें ये फील हो रहा है, तो हम उसकी बातों को एक गोपनीय रखते हैं और अच्छे से उसके चीज़ों को सुनते हैं, फिर हम दोनों

0: तरफों की बातों को सुनकर फिर एक अच्छे से एक राय बनाते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है. पहले हम बातचीत से समझाएंगे कि क्या सुलझ रहा है, नहीं सुलझ रहा. अगर नहीं सुलझ रहा हमारे हमारे फिर कमेटी में ये भी प्रबंध है कि उसे सजा मिल सकता है.
1: थैंक यू सो मच. तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में, और जब हम कहते हैं कि सेवा परमो धर्मः, तो हमारे दिमाग में कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कॉलेज कमिटीज का नाम सबसे पहले दिमाग में अंकित होता है, और वो होती है NCC और NSS. भावेश प्रताप सिंह है हमारे साथ NSS से. आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज का NSS का सबसे बड़ा और मेगा इवेंट कौन सा होता है और उसमें क्या होता है.
2: मैम सबसे बड़ा और सबसे मेगा इवेंट जो होता है वो 7 डेज कैंप होता है.
1: 7 डेज?
2: हाँ.
1: ओके.
2: उसमें मैम हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन रैली, या फिर उसके अलावा हम जो है क्लॉथ डोनेशन ड्राइव, या इसके अलावा और भी अदर एक्टिविटीज जो भी, जैसे हमने कुछ सेमिनार्स करा रखे थे, या हम किसी भी NGOs को बुला के उनसे कोलैब करके जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर प्रिविलेज हैं उनको वहाँ पे जाके, कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे, वो जाके पढ़ाते हैं. जो इनको पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती उनको जाके पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं, समझना चाहते हैं. और NSS का जैसे हम जानते हैं कि नॉट मी बट यू, एक NSS का मोटो है. इसके लिए हम ये भी जानना चाहते हैं कि NSS जैसे सोशल सर्विसेज में लोगों के लिए क्या करता है. जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हम ये अवेयरनेस रैलियाँ जो होती हैं इससे भी रिलेटेड हम रैलियाँ कराते हैं. हमने अभी पीछे वाटर कंजर्वेशन रैली निकाली थी, दिल्ली में वाटर सम प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, तो उससे रिलेटेड हमने लोगों से जाना कि कैसे क्या कैसे पानी का टाइमिंग क्या होता है और सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में NSS ये सब काम करती हैं.
1: थैंक यू सो मच.
3: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन. आज शेयर कर रहे हैं हम श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की, और यहां पे आपने सुना कितना टैलेंट है बच्चों में, और उसके साथ साथ एकेडमिक्स के साथ में दुनियादारी की जो बातें हैं वो भी सीखते हैं, और दुनिया के असली प्रॉब्लम्स जो है उनसे भी जूझते हैं. ये सभी चीजें मिलती हैं आपको अपने कॉलेज लाइफ में, और ये कॉलेज लाइफ जो आपको आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करती है ये बहुत ही स्पेशल होती है. इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है कैंपस की इसी जिंदगी को, इसी लाइफ को, इसी स्टूडेंट लाइफ को, इसी कॉलेज लाइफ को. 102.6 आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग.

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
7: आकाशवाणी रेनबो
8: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, जब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। आज पहुंचे कहां पे? हम पहुंचे श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1964 में। जी हां, बहुत ही लंबा इतिहास है इस कॉलेज का और यहां के बच्चों से की बातचीत हमारी सहयोगी माला नेगी ने। आइए जानते हैं कि आगे उन्होंने किससे मुलाकात की।
9: हाय, तो अभी मैं हूं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में। इन दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में मैं खड़ी हूँ और खूबसूरती का मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं होती, खूबसूरती का मतलब प्राकृतिक सौंदर्य भी होता है जिसकी रखवाली ये लोग करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, गार्डन कमिटी सोसाइटी जो है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की, उसके मेंबर्स के बीच में हूँ और ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनका कॉलेज खूबसूरती में भी कहीं कम नहीं रहना चाहिए और साथ ही साथ उसके औषधीय गुणों का फायदा भी कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि इनके कॉलेज में कुछ खास होता है ऐसा, वो मैं नहीं यही बताएंगे। आपका शुभ नाम?
10: आयुष यात्रे। वी ऑल वर्क टुगेदर बेसिकली, बट वी ऑल मैनेज टुगेदर। हमारा एक बहुत ही कोलैबोरेटिव बॉन्ड है बेसिकली, इन विच वी ऑल वर्क इन गार्डन एंड आर helpers basically which plant trees and we basically focus mainly on herbal plants.
9: और हमारे साथ है विदुषी। विदुषी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे herbal plants की बात हो रही है यहाँ पे, तो herbal plants और normal plants, उनके रख रखाव में कितना फर्क है और herbal plants जो है वो कितने demanding है care को लेकर?
11: मैम, डिमांडिंग एज सच हर एक प्लांट होता है और इनके रख रखाव के लिए हमारी हेल्प हमारे वर्कर्स के साथ होती है एंड वो हमें एजुकेट करते हैं और हम सीखते हैं और यही एक कंटिन्यूटी के अंदर चेंज चल रही है और चल

0: करती रहेगी, जिससे हम हर्बल प्लांट्स को सिर्फ हमारे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए एक जनरल अवेयरनेस सभी तरफ फैलाते रहे.
1: ओके, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू मैम,
1: एंड वेरी ऑल द बेस्ट टू यू आपके फ्यूचर एम्स के लिए.
0: थैंक यू.
1: थैंक यू. तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में, और मेरे साथ है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स का स्किल निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, और बहुत अहम जिम्मेदारी है इनके कंधों के ऊपर. SDC के मेंबर्स हैं हमारे साथ, यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेल के मेंबर्स. तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो सोसाइटी है उसमें रेगुलर बेसिस पर कौन से स्किल्स की ट्रेनिंग होती है और उसका क्या बेस्ट आउटपुट आपने दिया है.
2: मैम, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्किल डेवलपमेंट सेल का. तो हमारी सोसाइटी जो है वो बेसिकली स्किल्स पे काम करती है, वर्कशॉप्स कराती है कॉलेजेस में, बाहर के कॉलेज में बच्चों को अपनी भेजती है वर्कशॉप के लिए, और बाहर से जितने भी फील्ड्स के होते हैं उनको बुलाती है प्रोफेशनल्स को. लाइक अभी 2024 में हम लोग देखे तो MOU साइन किया, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई फर्स्ट ईयर बच्चों को, एंड उसके बाद हम लोगों ने उनको जॉब ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग उनकी क्लासेस चलती. वो जो बच्चे उसमें इनरोल हैं वो आज भी क्लासेस लेते हैं उसकी और प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसके अलावा हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराया था करियर आफ्टर अपॉर्चुनिटी, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एक BSC जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है आपने नाम सुना होगा उसके साथ हम लोगों ने MOU साइन करके अपना वर्कशॉप कराते हैं. उसमें स्टॉक मार्केटिंग के रिगार्डिंग बच्चों को सिखाते हैं, उसमें बच्चों ने बहुत सीखा, और बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे हमारे सोसाइटी के जो कॉलेज में गए, अदर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट सेकंड रनर अप भी लाए हैं.
1: ओके, आपसे जानना चाहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट आपकी जो सेल है उसके थ्रू अभी तक का आपका बेस्ट आउटपुट कौन से स्किल में आपने दिया है.
3: मैम, वी हैव गिवन टेल अबाउट द स्कॉलरशिप राइट मैम. फॉर स्कॉलरशिप में 100 स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड एंड दे हैव बीन फुल्ली फंडेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर.
1: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में, और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, क्योंकि ये यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाते हैं. इन शॉर्ट, दिस इज द प्लेसमेंट सेल ऑफ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग. तो वेलकम टू द शो. सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह की प्लेसमेंट्स आप दिलाते हैं.
4: मैम, जैसे हमारे कॉलेज में BCom एंड BA है, तो BCom जो स्टूडेंट्स होते हैं वो HR प्लस फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फाइनेंस और HR ही होते हैं, तो उस फील्ड में वो ज़्यादा आगे जाने की एक्सपेक्ट करते हैं. और जो BA के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, जॉब सेक्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा आगे जाने की इंटरेस्टेड होते हैं.
1: ओके, तो कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर प्लेसमेंट किया है.
4: मैम, पहले जो मॉर्निंग वर्जी थी उसमें KPMG आई थी, एंड वन उसमें ACS भी आई है.
1: और क्या ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को अगर प्लेसमेंट भी मिल जाती है तो ऐसे में बच्चे के लिए तो दुविधा हो गई ना कि इंटर्नशिप के साथ साथ अगर उसको जॉब करना है तो कॉलेज को किस तरह से मैनेज करे, इसमें आप ब्रिज की तरह कोई भूमिका निभाते हैं.
5: मैम, जैसे हमारे कॉलेज में होता है कि अगर वो बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो वो फिर फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के बाद इंटर्नशिप कर सकता है, तो उसे हमारा कॉलेज भी सपोर्ट करता है और NOC देखे. बाकी उसे जो कॉलेज के रेगुलर अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो गई और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स होते हैं वो हमें सपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमें अटेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं होती और वो बच्चा अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद हमारे कॉलेज में कंटिन्यू कर पाता है. और जो बच्चा मैम सेकेंड ईयर पास आउट है, मतलब सेकेंड ईयर उसने कंप्लीट कर लिया और थर्ड ईयर में है, या जिसने थर्ड ईयर कर लिया वो फुल टाइम जॉब के लिए आया है, तो मैम उसे डायरेक्ट ही प्लेसमेंट दिलवा के और जो सेकेंड ईयर में अपनी इंटर्नशिप करके और आगे प्लेसमेंट कंटिन्यू करना चाहता है, तो मैम उसको भी हम सपोर्ट करते हैं कॉलेज से NOC दिलवाने में और बाकी टीचर से बात करके और उसको जो भी फैसिलिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड करवाने में.
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन. हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में, और अभी हमारे साथ हैं आयुषी चौधरी जो कि श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की प्रेसिडेंट हैं और महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण साबित करती हैं. तो आयुषी, सबसे पहले वेलकम टू द शो.
6: थैंक यू.
1: जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी मुश्किल थी आपकी ये डगर.
6: मुश्किल था पर नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन सपोर्ट था कि टीचर्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सर, स्टूडेंट्स थे मेनली. हाँ, उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, और मेनली फैमिली. पहला होता कि आप घर वालों से हो, सपोर्ट है आपके पास कि आप जाओ कर लेंगे, हम सब देख लेंगे.
1: हाय, तो मैं अभी हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के स्टूडेंट्स के साथ. विमेन डेवलपमेंट सेल के मेंबर्स हैं मेरे साथ और फिलहाल द प्रेसिडेंट रितिका इज विद अस. और रितिका से मैं ये स्पेशली जानना चाहूंगी कि जब हम विमेन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो कॉलेज की जो लड़कियां हैं, आई थिंक अगर हम वैसे सोशल प्रोस्पेक्ट्स में उनको देखें तो वो ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप हैं. कुछ ऐसा नहीं लगता मेट्रो सिटी में खास तौर पर. तो ऐसे में आपका जो सेल है वो क्या काम करता है कॉलेज में विमेन के लिए, किस तरह का.
7: जो हमारा सेल है वुमेन डेवलपमेंट सेल, जैसा कि आपने इसको सीमित किया कि ये सिर्फ

0: महिलाओं के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेशो इक्वल है, वी ऑल्सो हैव मैन एंड वी ऑल्सो हैव वुमेन, बिकॉज वुमेन डेवलपमेंट इज ये फिलहाल एक ऐसी विषय के ऊपर नहीं है जिसमें आपको सिर्फ वुमेन को एम्पावरमेंट करना है। आप में आपको इसमें जो मेन है साथ में उनको भी सेम लेवल पे एजुकेशन एंड व्हाट वी से अवेयरनेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट दे कैन आल्सो रिस्पेक्ट द वुमेन एट द सेम लेवल।
1: ओके,
0: अगर आप अकेले एक महिला को आगे करेंगे उससे सशक्तिकरण नहीं होता, आपको साथ में जो उसका साथ देगा, इट्स आल्सो अबाउट हेल्पिंग अदर्स, बोथ आर जेंडर्स, बट इसमें इक्वालिटी कब आएगी जब दोनों साथ में चल रहे हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: दिस इज द मेजर रीजन व्हाई द रेशियो इज इक्वल। यू विल सी यहाँ पे लड़कियां भी हैं और यहाँ पे मेन भी हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट एम्पावरमेंट बिगिंस विद द चेंजिंग ऑफ मेंटालिटी। आप अपनी सोच को बदलेंगे।
1: आपने कहा ना कि विमेन डेवलपमेंट सेल और यहाँ पर लड़के और लड़कियों का रेशियो इक्वल है, ये मेरे माइंड में आया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन डेवलपमेंट, तो वहाँ पर आपको महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी हर तरफ दूर दूर तक, बट हैविंग मेन ऑल्सो विद अस एट द सेम टाइम लगता है कि हाँ ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ दूसरे तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं।
0: नहीं, श्यामलाल कॉलेज में यहाँ पे ऐसा है कि जो जो द मेन ओवर है दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, दे ऑल्सो वॉन्ट द वुमेन टू ग्रो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही बढ़ना चाहती है, यहाँ पे सब चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े और उनके साथ मैं भी आगे बढ़ू, क्योंकि एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार आगे बढ़ता है।
1: सही,
0: मेरी सोच ये है।
1: जी, बहुत बढ़िया।
2: वाकई में जब सोच सही होती है तो सही दिशा को चुनना आसान हो जाता है और मंजिल जो है ना बिल्कुल आंखों के सामने होती है। जब इरादे इतने दृढ़ हों तो फिर मंजिलें जो है ना उन्हें पाए बिना तो ये स्टूडेंट रह ही नहीं सकते हैं, चाहे एकेडमिक्स की बात हो, इंटरेस्ट की बात हो या फिर एक्सपोजर की बात हो। भाई, दुनियादारी से दो चार करवाना और उसके साथ साथ आगे आने वाले समय के लिए इन्हें तैयार करना, ये सब काम करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ, और यही स्टूडेंट्स आगे जाकर इस दुनिया को बदलने का इरादा तो रखते ही हैं, उसमें पूरी कोशिश जो है किस तरह से करनी चाहिए और उसके लिए उन्हें तैयार करना, ये सब चीजें जो है ना हमारी स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा होती है, हमारी यूनिवर्सिटीज का हिस्सा होती है। यूनिवर्सिटी के सैर करवाते हैं हम आपको हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
7: आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल, और आज हम आपको सैर करवा रहे हैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की, जहां पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने की वहां के प्रिंसिपल से बातचीत।
8: नमस्कार, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नचिकेता सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
9: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है।
8: श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के बारे में अगर बात करें तो 1964 से लेकर 2026 तक एक बहुत लंबी यात्रा रही है इस कॉलेज की, तो जानना चाहेंगे एक लंबी यात्रा के दौरान कॉलेज कौन कौन से पड़ावों से गुजरा और उसमें कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस आए।
9: 1964 में ये जब कॉलेज बनी, 4-5 साल के बाद इवनिंग शिफ्ट का वो गठन हुआ
8: जी।
9: और ये कॉलेज तब से एक खास मकसद से शिक्षा जगत में उसकी कंट्रीब्यूशन रहा है। वो मकसद ये था कि दिल्ली के जो ये जो क्षेत्र है वो ईस्ट दिल्ली, वहाँ से ज्यादातर जो बच्चे जो है थोड़ा सा जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है थोड़ा पोर अंडर प्रिविलेज बच्चों का रहा है, वो इसलिए एक नेक उद्देश्य से हमारे जो प्रतिष्ठाता है कॉलेज के लाला श्यामलाल गुप्ता जी, उन्होंने वो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रहे हैं, तो एक फिलान्थ्रोफिक और एक एजुकेशनिस्ट के मतलब नाते उन्होंने ये कॉलेज को बनाया था और इन बच्चों के लिए वो शिक्षा का जो है सर्विस जो वो उपलब्ध किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉलेज जो है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग वो आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं और यहाँ उसी पे फोकस रखते हुए जो है अच्छे क्वालिटी

0: श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में पढ़ना बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है? कंफ्यूजन नहीं होता उनके माइंड में कि अगर हम इवनिंग में पढ़ेंगे तो मॉर्निंग में क्या करेंगे?
1: मैं तो इस चीज को काफी इसको एनालाइज किया है कि कितना फ्यूचरिस्टिक विजन होगा कॉलेज के जो फाउंडर थे, जिन्होंने तभी सोचा था कि कुछ ऐसे बच्चे जो दिन में कमाएं और शाम को पढ़ाई कर पाए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस दिल्ली के इस जो रीजन में से हमें यूपी, बिहार और ईस्टर्न यूपी के साइड से काफ़ी बच्चे, हरियाणा बाहर से बच्चे आते हैं। इस मॉडल से प्रेरित हो के बहुत बच्चे यहाँ तब आते रहे हैं, लेकिन समय बदलते बदलते आप जैसे कहा कि मॉर्निंग, ज़्यादातर कॉलेज मॉर्निंग है, तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनको रहता है हमेशा कि एक कॉलेज में जा रहे हैं, सुबह से शाम तक हम कॉलेज में रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन आज जैसे हम लास्ट 10-15-20 साल से देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसका सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रहे और बाकी दुनिया को वो भूल जाए तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता है
0: जी।
1: तो उस बच्चे को एक्टिविटीज़ और तमाम और चीज़ करने के साथ साथ वो बच्चे को अलग कोर्सेज भी करना जरूरी हो गया। एक सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री लेके आज ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है, उसको एड ऑन कोर्सेज करना होता है, उसको अलग अलग डिग्री तो नहीं ले सकता है दो एक ही समय, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्किल का कोई कोर्स, ये सब बच्चे आजकल करने के लिए मजबूर है। वो अब जो है वो उनके लिए मैंडेटरी हो गया। हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को वो दिक्कत नहीं होती है जो मॉर्निंग कॉलेज के कॉमर्स स्टूडेंट्स को होती है कि वो क्लास छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई सीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करके भी वो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो उनको भी चाहिए होता है कि साथ साथ और हो जाए कुछ। तो इवनिंग कॉलेज के बच्चे जो है एडवांटेज में रहते हैं कि वो पूरा मॉर्निंग जो है 2:30-3 बजे तक वो फ्री है कुछ करने के लिए, जिससे उनका कॉलेज का शेड्यूल में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है। जिनको पता करना होगा श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के बारे में कि यहाँ क्या होता है एज एन इवनिंग कॉलेज, दे कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग इन श्यामलाल कॉलेज।
0: जी जरूर। और अब क्योंकि इस इंटरेक्शन के बाद हमारे इस प्रोग्राम अल्फा जेन और हमारी रेनबो फैमिली के साथ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का नाम भी जुड़ गया है, तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका।
1: बहुत
0: और बहुत बेहतरीन रहा आज का ये इंटरेक्शन, क्योंकि इन इंटरेक्शंस के जरिए ही हम असल में जान पाते हैं कि कॉलेजेस के अंदर क्या कुछ खास है जो चल रहा है।
2: वाकई में हम लोग जानते हैं कि जान पाते हैं, इनफैक्ट कहना चाहिए कि कॉलेजेस में क्या कुछ खास है जो हो रहा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। नाम है इसका अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जिसमें हर बार हम आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज जो है उनको समेट कर ले आते हैं। भाई फ्यूचरिस्टिक विजन की बात करें तो ऑब्वियसली कॉलेज का काम है आपके आगे पॉसिबिलिटीज के द्वार खोलना, वही काम जो है ये हमारे कॉलेजेस करते हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम का समय जो है वो था बस यहीं तक। आज का ये खास एडिशन श्यामलाल कॉलेज इवनिंग से, जहां पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की हमारे लिए, आज का कार्यक्रम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समय

0: बद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
0: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं, तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन्स गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Italian Prime Minister Giorgia Meloni in Rome today, aiming to further strengthen India-Italy bilateral relations across key sectors. The meeting focused on boosting cooperation in trade, investment, technology, defence, clean energy and strategic partnerships. Both leaders also discussed regional and global developments of mutual interest. The talks reflected the growing strategic partnership between India and Italy, with an emphasis on expanding economic collaboration and people-to-people ties. Following the delegation level talks, both leaders delivered a joint press statement.

0: बहुत काम।
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाता। I'm not listening to you।
0: दिन में नजरें इनकी इधर उधर।
1: I'm not listening to you। प्यार से जिंदगी नहीं चलती। Okay, I'm not with her।

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: Our voice gets you heard everywhere.
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লাভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
4: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
4: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन

0: इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
0: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
2: Mr. Modi also said both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and the UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. The Defence Research and Development Organisation DRDO has successfully completed the final developmental trials of the unmanned aerial vehicle launched precision guided missile V3, marking a significant achievement for the country's defence sector. On the occasion, Defence Minister Rajnath Singh termed it as a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defence sector. The Gujarat government has extended its support to One Nation, One Election Bill. State's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi stated this after Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election held discussions with a delegation of various political parties in Gandhinagar on the second day of its visit today. Defence Minister Rajnath Singh today met South Korean Minister for Defence Acquisition Programme Administration Lee Yong-chul in Seoul. In a social media post, Mr. Singh said during the meeting, both sides agreed to harness the symbiotic efforts to create avenues for joint development, joint production and joint exports. Severe heat wave gripped northern and central India with temperatures breaching the 44 degree mark at several places today. The India Met Department has forecast severe heat wave conditions will continue over northwest and central India during the week. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur, keeping their playoff hopes alive. And that is the end of this news bulletin.
3: প্ৰিয় শ্ৰোতা, বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো একক ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠানটি। আজিৰ একক ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠানত আগবঢ়াবলৈ লৈছো চামেলি মেমচাব ছবিখনৰ পৰাই কেইটিমান গীত।

0: जिगी जागी जाओ, बोगी जाओ, जिगी जागी जाओ। जो तो घरे बहु बिठे बिठे बोरे चोले गो, जो बोले रो अंगड़ा उड़े गे ना बोले गो। जिगी जागी जाओ, बोगी जाओ, जिगी जागी जाओ। जिगी जागी जाओ, बोगी जाओ, जिगी जागी जाओ।
1: अरे जिया मोर लाला के और जौवन कोलोसी पानी झलके, अरे जिया मोर लाला के।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: সম্প্ৰতি বাৰ্তা শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰবাচক পুনীত ত্ৰিপাঠী। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स् इत्यत्र मुम्बई इण्डियन्स् दलं कोलकाता नाइट राइडर्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता।

0: यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरं उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जॉर्जिया मिलोनी इत्युभाभ्यां लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्य आधारः स्वातन्त्र्यस्य, लोकतन्त्रस्य, भविष्यस्य कृते संयुक्त दृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहिता अस्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धिः, सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य, ऊर्जा परिवर्तनस्य, प्रबन्धस्य, सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्, यस्मिन् मानवरहितं वायुयानेन प्रक्षेपितं सटीक निर्देशित V3 प्रक्षेपास्त्रस्य अन्तिम विकासपरीक्षणानां सफलतया सम्पादितम्। आन्ध्रप्रदेशे कुर्नूलस्य समीपे DRDO परीक्षण परिधि मध्ये परीक्षणं जातम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः DRDO संस्थायाः अभिनन्दनं कृत्वा रक्षाक्षेत्रे स्वावलम्बन

0: अर्थं प्राप्तं व्यूहात्मकं सोपानमिति वर्णितम्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य सियोलनगरे दक्षिणकोरियादेशस्य रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनस्य मन्त्रिणा ली योङचुल इत्यनेन सह मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्रीसिंहः अवदत् यत् उपवेशने उभौ पक्षौ संयुक्त विकासस्य, संयुक्त उत्पादस्य, संयुक्त निर्यातस्य च मार्गाणां निर्माणार्थं सहभागी प्रयासानां उपयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सः अग्रे अवदत् यत् द्वयोः देशयोः नवान्वेषण व्यवस्थायाः समन्वयार्थं महत्वाकांक्षी काइंड एक्स उपक्रमस्य संभावनायाः उद्घाटनस्य मार्गचित्रस्य विषये अपि विचारः अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आगामि जनगणनायां जातिगणनां कर्तुं केन्द्रस्य निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं च यत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्यान्तर्गतमायाति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नतवर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांशसंग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेऽस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरीवर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्रीगडकरीवर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिम भारते तथा मध्यभारते तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितेः सम्भावना प्रकटितास्ति। आईएमडी इत्यस्यानुसारं आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडा वार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: প্ৰিয় শ্ৰোতা, মাদ্ৰী ভাষাতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো তন্ময় শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত খেয়াল।

0: श्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi also said that both

0: ইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 শুনক সমাচাৰ চেণ্ডা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই লাভলী নিগম। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण

0: बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।